दिमाग था ही ने लाकिन अने अंधे होकना उदय अमक भले हदीदा वे कती ने कस्से हुक्मी तो इंधा या सब अमीयदन वरा के भले सोकना शिबोत के न इकतितियदन भले सोकना अरे हुक्मा में इकतितियदन इदे मलिया फरीस गल हुआ वग्गे को जा हुआ बरियो धाय सेदना बरी सोक मोजिजाते दलामन हरे हुए दिन बरु अमाग धई हुआ इमाम बाबरी मुआ अलामत रातेन लाकिन उन अभी यूनिस इतलाम अनून वे न सोमा में किद यूनिस वे न आशो इफ ईब मही हवद हुआ मही पे हुआ हगित अफलाय आदम और हन मै हवद हुआ मही पे हुआ तो बूत गिन इबदा इंद ने नवाय उदय हन हुक्मी तीन त्याकीद ओन ओता सा थेमी इदन उन अभी यूनिस कुआसाना ए भले बरेओ धाय हदीदियान हो बरा तूबियान तो इलाकिन यूनिसी कविन कगालेफ ओसीदी था हुक्मी तिंती व्याकित ओ नोता सा थेमे तिंदे बतू तुबूत अगिया एताय सुलेमानी तिफगरंदीत भले सिनाक्रो इत्थारू लाकिन तो सुलेमानी कविन कगालेफ आज इन वादामी इत्फर इन हो नगेम अमीन हो फीने ने बिहारून अरे बरो कीमरीन मलिया आज इन ओगौ होइन फिरे बेते नितिगिर नियत इदन मलिया आजिन ओगौ सूर होइगी गिगनाने बेते नितिगिर नियत इदीन आजिन एन हो ओगौ अतमेगा नासा निगिया अरे शिबोबा एमेरन अफलाय आजिन गिगियानी वरे जिन असरमा बरे सोक अमक्का भायान ओगौ अरे शुम्यानी त्वेंतो इकुरीन बेन उतक अरे वालू सूरे का मक्का वीक्त आन उधई अमघन बग इक्त यदन इदे यसु अमसे ओधई भली समे तुंदे हुआ सनाया हुआ ए आनी तबर्रा विंगदन परो तरो समीने थ्यारून ओधई गाल बरो सोया देतु को सनाया को बर्रा विंगदीन तरो समत्यो क्यारून इदे यसु अवतकी धाय दे तो आप तो इसनाय अरे आयगा इकती नईदे मलिया यसुआ कुरियात्याय बेत तूलिया दे तू व इसनाया व आन इकतीन बाबु तिबरेते बेफे भर्रीवे तोना दन्नीब कसनो व क्वातो व दे तो व इकती निदे फसल तम नमहय बेत तो इन तोकना यसुआ गवी फेरा तो भरे दारा कैसा उन्नेद गुदा धई बारो कुलल ने मर्रायना अरे बरू फल्लू कात्यम अरे बतियो खी ऐसा ऊध आरव कस्सा इम दरी विंगदन मलिया यसु अवोध गुदान में ताले सोया देर आतके न तेरायो इगिदे धाय गीगिय बरू इतेरा तेराए हब्बाद गत सलली ब्रिव्यान अरे आकिल एनी दामयान दीन हब्बा त्वरित अवे हो इफीम हिन डिव्यान अरे ओम हिम गुद हाश हो के हाय वाश होगा की कई थब्बा उल्ला यक्त लाकिन तू इन तिफिर हो तिफूत गदम कित बारे अकई बलमताय तेलव तेरा वेर नवे तिबितिगडिबिया अरे यकियान हो तिनावे स्कितने इदिरन लाकिन शलिक थब्बा दाय हाशिब डिबियानी शेब दोर हर्रो भाया अरे वेर असगुर तमुन दोर इक्त अरे वेर मही तमुन दोर इक्त अंगुले बारी बैम सवेद कुरियातिया इवरियो धा ए आनी त्रात्यान ओध इनान हो मिताले तिम फरी दई दीन यसु अय गुबे तिबरेते थदा ये ती कोबास तुनाती कनान बरेक न तियवात लाकिन बरे अतियवात कित्ते इबरीब का गुदान इतियु इंद गुदान अरे इमार इंद नात वाबरीब का अरे तू न बरु इबरिये थोगी गितिंद ओन सब्बी अरे बरे मिताले अम्फरी बरा शबिब ने खंकर हियान एमसी उने खंकीस ना किरन तारे का अफमियान उन अब इसियास बरे योह न इसरिदे तू न इकत तिंदे बराक दीम आप तेमसी उन लाकिन दो रंग का अफमतान बराक दीम आप तिशबिब न लाकिन दो रंग का रहतान ओ न धाय गेन या किरन अंगुले न डडे बिसियान अरे गदे न सियान बक भी काय के गदे सोह न रहीन इकतीन अंगुले सोहन इमस इकतीन अग्नाए अफामीन इकतीन अरे आने बेते तिगिरने आने बरे मेले दे लाकिन बरेक न गदाक न रहेन

ब्रावियो दयुन तेहेनी मीनी कतिसनी नेना हेनेन ओत्तो ना तुदाई दोकना नेहरे उतुरन शी तोक नंबा तो तेहाय मीनी कनी सरी ओकना नब्बो व एम बली बनेत ओत्तो ना अमसे हो अदी दाने दे बे दोरी दे तोकना उन उदई का कोनो शान ही मयुक का बेकती इन हेनेन निशब्बे को नोधी कसे ना दाका काफ किंग के उन उदई तो अल्लाह या बेकती है तुन तोना कसो नोधी या बेकती है तोना ही आयोन उन हेनेन उशान है ना गवादी वो शान है गुदा हो ये वो इकत्ती शान है का उन बरुक बा सही या सही शगामती है तोनात धमान उदा एफे तुगराय ते कत्ये का ग्रीड अल्लाह मामित ना ते कहने आई तर मुमाब तवाइद अम तर रामित शासुर ते भी एक लहित डॉक्टर ते कत्या मुहंदिस ते कत्या मुहामिब ते कत्या उस्ताद ते कत्या आन अरे तेना तेरा उते ते गाना ते व तेरा उते वाहन ते कत्या बेन ओदोर उशान ही ब्रावा का विकती ने नने सरे तो दरते कतेक वदु कतेक अदीना आन अरे ओरे विकती कोरे विशाकु हुआ ओरे विरशद व ऊन हंदाईबु अरे तोन तु दमान ओनाय सवागा दरबेते दिकती ने लममानत नत कन्नत सवागा ना अरे आन दुक्का ने कतेक तिजाराते मयुक्का भो अकेना अरे मताय मकतिन उन अल्लाह अद ग्रिसे ने तोकना का उन नत कन्नत ना इकत्ती शान का बा सही सही शगामान उन उदय दा उशान ओकना सही सही ने वो भी सही सही ने वो हो एतेन उत्तु नाती दा इन इन तो न तुने सरीवे तोकना शनि मयुक्का वा केती मल्लबे एन रसी फे भी ने तिकललते बुधायुन शगामेनो बेन ओदोर ना दिमिरनो तु तो न तु तिमिरने रिशिदन उर्शुदना गदी बुतिंदेक तुमरी उंबा तो ना थोय दास्तिनी आया अरे ना तारे दाय का दुर शन गार दूर शालिक गरिशाब शालिक कतीने गुदा के कतीने मर्रियो गरिशक कसे आहेती लिख के दे बेतुनाती दाय शनि दाय का वकेना रसीफ कतीएक आन अरे इकती शन का अरिवोकनो शगामान